ये NHK World Japan की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज़ पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है UTC अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समय अनुसार 3 जून बुधवार रात 11:30 बजे शांगविला जैन और वायला खवानों से सुने समाचार। भीषण उष्ण कटिबंधीय तूफान छांगमी चीबा प्रिफेक्चर के दक्षिण में समुद्र के ऊपर से गुजर रहा है। कांतो और तोहोकू क्षेत्र के लोगों को भूस्खलन, बाढ़ और तेज हवाओं के प्रति सतर्क रहने की सलाह दी गई है। जापान मौसम विज्ञान एजेंसी ने बुधवार को टोक्यो के कुछ हिस्सों में भारी बारिश और भूस्खलन के लिए लेवल 4 की आपात चेतावनी जारी की थी। हालांकि अब यह चेतावनी हटा ली गई है। टोक्यो की कई नदियों के लिए भी बाढ़ की आशंका को लेकर लेवल 4 की आपात चेतावनी जारी की गई थी। अब यह चेतावनी भी हटा ली गई है। छांगमी तूफान बृहस्पतिवार दोपहर तक 24 घंटों में कांतो और तोहोकू क्षेत्रों में 120 मिलीमीटर तक बारिश ला सकता है। अमरीकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का कहना है कि ईरान के नेता अपने परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत के लिए राजी हो सकते हैं। उनका यह बयान ऐसे समय आया है जब अमरीका और ईरान के बीच बातचीत ठप होती दिख रही है। रूबियो ने मंगलवार को सीनेट की विदेश संबंध समिति में सांसदों से कहा कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलना पहली शर्त है। उन्होंने कहा कि जहाजों का सुरक्षित और निर्बाध आवागमन सुनिश्चित करना आगे बढ़ने का आधार है। हालांकि उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि केवल हॉर्मुज जलमार्ग को फिर से खोलने से ईरान को प्रतिबंधों में छूट नहीं मिलेगी। रूबियो ने कहा कि प्रतिबंधों में किसी भी प्रकार की छूट के लिए शर्त होगी, जिसका अर्थ है कि जिन कारणों से ये प्रतिबंध लगाए गए थे उन कारणों के बदले में छूट मिलेगी और वह है उनका परमाणु कार्यक्रम। 2025 में जापानी नागरिकों के जन्मे बच्चों की संख्या रिकॉर्ड निचले स्तर पर रही। जापान के स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि 2024 की तुलना में पैदा हुए बच्चों की संख्या 14,937 घटकर 671,236 रही। यह आंकड़ा लगातार 10 वर्षों से घटता चला आ रहा है और 1899 में रिकॉर्ड रखना शुरू होने के बाद से सबसे कम है। राष्ट्रीय जनसंख्या एवं सामाजिक सुरक्षा अनुसंधान संस्थान ने 3 साल पहले अनुमान लगाया था कि 2040 के दशक में जापान में जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या घटकर 6,70,000 के आसपास हो जाएगी, लेकिन यह स्तर करीब 15 साल पहले ही आ पहुंचा है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1949 में जन्म दर चरम पर थी, जब जन्मे बच्चों की संख्या 26 लाख से अधिक थी। जापान की कुल प्रजनन दर यानी जीवन काल में एक महिला द्वारा पैदा किए जाने वाले बच्चों की अनुमानित संख्या पिछले वर्ष घटकर रिकॉर्ड 1.14 पर आ गई, जो 0.01 की गिरावट है। 1947 में इस आंकड़े का रिकॉर्ड रखना शुरू हुआ था। टोक्यो शेयर बाजार के मुख्य सूचकांकों ने बुधवार को अब तक के उच्चतम स्तर को छुआ। निवेशकों ने AI की बढ़ती मांग पर दाव लगाते हुए हाईटेक शेयरों को प्राथमिकता दी। निक्केई 225 सूचकांक 2.5% बढ़कर 68,402 पर पहुंच गया। यह पहली बार 68,000 के पार बंद हुआ। दिन के शुरुआती दौर में यह 68,786 के उच्चतम स्तर पर चढ़ गया था। सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट से संबंधित शेयरों ने इस वृद्धि में अग्रणी भूमिका निभाई है। व्यापक टॉपिक सूचकांक ने पहली बार 4,000 से अधिक के स्तर को छुआ। बाद में यह उस स्तर से थोड़ा नीचे बंद हुआ, लेकिन 1.8% की बढ़त के साथ रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया।

0: ये समाचार एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: फुकुशिमा दाइची परमाणु ऊर्जा संयंत्र के संचालक का कहना है कि उसने रिएक्टर नंबर 2 के भंडारण कक्ष से ईंधन की छड़ें हटानी शुरू कर दी हैं। टोक्यो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी टेपको ने मंगलवार दोपहर को ये प्रक्रिया शुरू की। टेपको ने परमाणु ईंधन को सुरक्षित रूप से ठंडा न कर पाने की स्थिति में समस्या का खतरा कम करने के लिए इन छड़ों को हटाने का निर्णय लिया है। 2011 में परमाणु ऊर्जा संयंत्र में हुई दुर्घटना के 15 साल बाद भी रिएक्टर नंबर 2 के भंडारण कक्ष में कुल 615 छड़ें रखी हुई हैं। इनमें से 587 इस्तेमाल शुदा है जबकि 28 का उपयोग नहीं हुआ। श्रमिकों ने मंगलवार को रिमोट से संचालित एक विशेष क्रेन का उपयोग करके इस्तेमाल न की गई छड़ों को हटाकर उन्हें धातु के कंटेनरों में रखना शुरू कर दिया। भविष्य में इन्हें एक उन्नत प्रशीतन प्रणाली वाले सुविधा केंद्र में स्थानांतरित किया जाएगा। टेपको की अगले 2 वर्षों में सभी 615 छड़े निकालने की योजना है। उसका लक्ष्य वित्त वर्ष 2028 की दूसरी छमाही में इस प्रक्रिया को पूरा करना है। जापान सरकार की एक विशेषज्ञ समिति ने बच्चों द्वारा सोशल मीडिया के उपयोग पर चर्चा करते हुए उसके संचालकों से सख्त आयु सत्यापन प्रणाली शुरू करने और बच्चों को बढ़ते जोखिमों से बचाने के लिए उपाय करने का आह्वान किया है। सलाहकार समिति ने मंगलवार को आंतरिक मामलों एवं संचार मंत्रालय को एक मसौदा रिपोर्ट पेश की। नाबालिगों को धमकाने और आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने के लिए सोशल मीडिया का दुरुपयोग किया जा रहा है। रिपोर्ट में बताया गया कि सोशल मीडिया के व्यापक उपयोग से कई तरह के जोखिम पैदा होते हैं जिनसे निपटना जरूरी है, जैसे कि विभिन्न सूचनाओं का प्रसार और संचार, साथ ही सोशल मीडिया की लत सहित मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं। इन समस्याओं को उजागर करते हुए मसौदा रिपोर्ट में तर्क दिया गया है कि सोशल मीडिया संचालक अपनी सेवाओं को इस तरह से बनाएं जिससे बच्चों की सुरक्षा हो सके। इसमें आयु सत्यापन में सख्ती और बच्चों को सुरक्षित रूप से सोशल मीडिया का उपयोग करने में सक्षम बनाने वाली प्रणाली को डिफॉल्ट सेटिंग के रूप में शामिल करने की मांग की गई है। थाईलैंड की गर्म जलवायु में ठंडे मीठे पेय पदार्थ लोकप्रिय हैं, लेकिन चीनी के अत्यधिक सेवन से होने वाले स्वास्थ्य जोखिमों को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं। इस वजह से थाईलैंड ने लोगों की आदतों में बदलाव लाने का प्रयास शुरू किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि थाईलैंड में लोग प्रतिदिन औसतन 21 चम्मच चीनी का सेवन करते हैं। यह विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा सिफारिश मात्रा से 3 गुना से भी अधिक है। सरकार ने अब रेस्तरां और कैफे के लिए दिशा निर्देशों में संशोधन किया है। फरवरी में जारी मानकों के अनुसार कोल्ड कॉफी में चीनी की अनुशंसित मात्रा प्रति सर्विंग 7 चम्मच से घटाकर 3 चम्मच कर दी गई है। इसका पालन करना स्वैच्छिक है, लेकिन बैंकॉक की एक कॉफी शॉप अब ऐसे पेय पदार्थ बेच रही है जिनमें पहले की तुलना में चीनी की मात्रा आधी है। ये चलन अब दक्षिण पूर्व एशिया में भी बढ़ रहा है। सिंगापुर ने खाद्य प्रतिष्ठानों में परोसे जाने वाले पेय पदार्थों पर चीनी की मात्रा का लेबल लगाना अनिवार्य कर दिया है। वियतनाम अगले साल अधिक चीनी वाले पेय पदार्थों पर कर लगाने की योजना बना रहा है।
0: इसके साथ ही एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है।

0: एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम बोलचाल की जापानी में आपका स्वागत है। मैं हूं चिन्मय दीक्षित।
1: और मैं हूं सुमिता भट्टाचार्य जी। तो आइए मजे से सीखें जापानी भाषा।
0: आज 14वें पाठ में हम सीखेंगे अपनी इच्छा बताना।
1: वियतनाम से जापान आई विदेशी छात्रा ताम हारूसान हाउस में रहती है। पिछले पाठ में ताम हारू जी और मियाँ से बात कर रही थी और उसने शर्माते हुए कहा था कि जापान में किसी दोस्त से मिलना चाहती है।
0: आज वो वियतनाम में उस दोस्त के साथ बिताया समय याद कर रही है। जापान आने से पहले ताम वियतनाम के एक प्राथमिक स्कूल में स्वयंसेवी थी। एक दिन उसके स्कूल में जापान से संगीत का एक विद्यार्थी आया और उसने बच्चों के लिए पियानो बजाया। उसका नाम यूकी था। ताम को यूकी की प्रस्तुति बहुत पसंद आई और उसने हिम्मत जुटाकर उससे जापानी भाषा में बात की।
1: तो आज के पाठ में सुनते हैं उन पुराने दिनों की बातचीत।
2: कोनिच्वा, वतशी वा ताम देस।
3: आ, बोकु यूकी देस। ताम सान, निहोंगो गा देकिरुन देस ने।
2: 少しだけです。ラジオで勉強しました。
3: すごいですね。
2: 日本へ行ってみたいです。
3: ぜひ来てください。僕が案内しますよ。
0: अब इस बातचीत को फिर से हर वाक्य के अर्थ के साथ सुनते हैं। पहले ताम ने यूकी से कहा,
2: こんにちは。
1: नमस्ते।
2: 私はタムです。
1: मैं ताम हूँ।
0: यूकी ने उत्तर दिया,
3: あ僕、ユキです。
0: お、मैं यूकी हूँ।
3: タムさん、日本語ができるんですね。
0: ताम जी, आपको तो जापानी भाषा आती है।
1: तब ताम ने कहा,
2: 少しだけです。
1: थोड़ी बहुत ही।
2: ラジオで勉強しました。
1: रेडियो से पढ़ाई की।
0: फिर यूकी ने प्रशंसा करते हुए कहा,
3: すごいですね。
0: अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है।
1: उसके बाद ताम ने अपनी इच्छा बताई।
2: 日本へ行ってみたいです。
1: जापान जाकर देखना चाहती हूँ।
0: इस पर यूकी ने खुशी से कहा,
3: ぜひ来てください。
0: जरूर आइएगा।
3: 僕が案内しますよ。
0: मैं घुमाने ले चलूंगा।
1: तो अब समझ आया कि ताम जापान में किससे मिलना चाहती है। संगीत की पढ़ाई कर रहे जापानी छात्र यूकी से, जिससे वो वियतनाम में मिली थी। देखते हैं आगे क्या होता है।
0: आज का मुख्य वाक्य है,
2: निहोन हे इत्ते मिताई देस,
0: यानी जापान जाकर देखना चाहती हूँ। ये वाक्य याद करके आप अपनी इच्छा बता सकते हैं।
1: इसमें
4: निहोन
1: का मतलब है जापान। उसके बाद लगा है कारक
4: ए,
1: जो दिशा बताता है।
4: इत्ते मिताई देस
1: का अर्थ है जाकर देखना चाहती हूँ।
0: आज के वाक्य में ध्यान देने वाली बात यह है कि अपनी इच्छा बताने के लिए क्रिया के ते रूप के बाद
4: मिताई
0: लगाते हैं।
1: यहाँ क्रिया है इकु, यानी जाना, और उसका ते रूप है इत्ते। उसके बाद मिताई लगाकर बना है इत्ते मिताई, यानी जाकर देखना चाहती हूँ। और अंत में लगा है दिस, जिससे पता चलता है कि ये वाक्य का विनम्र रूप है।
0: पिछले पाठ में हमने सीखा था इकिताई देस, यानी जाना चाहती हूँ,
4: ताई देस
0: और
4: ते मिताई देस
0: में अंतर ये है कि जब आप कुछ करना चाहते हो तब कहेंगे
4: ताई देस,
0: और जब आप पहली बार कुछ करना चाहते हो या कुछ करके देखना चाहते हो जो मुश्किल भी हो सकता हो तब आप कहेंगे
4: ते मिताई देस।
1: तो सुनिए और बोलने का अभ्यास कीजिए।
4: इत्ते मिताई देस।
1: अब सुनते हैं एक छोटी सी बातचीत जिसमें एक महिला बता रही हैं कि वे जापान में क्या करके देखना चाहती हैं।
5: निहोन दे नानी गा शिताई देस का?
6: सो देस ने, सुमो वो मिते मिताई देस।
0: और अब समझ लेते हैं इसका अर्थ। पहले आदमी ने पूछा,
5: निहोन दे नानी गा शिताई देस का?
0: जापान में क्या करना चाहती हैं?
1: तो महिला ने जवाब दिया,
6: सो देसु ने।
0: इसका इस्तेमाल उत्तर देने से पहले सोचते समय करते हैं। महिला ने आगे कहा,
6: सुमो वो मिते मिताई देसु।
1: सुमो पहलवानी देखना चाहती हूँ।
4: सुमो
0: का अर्थ है सुमो पहलवानी,
4: मिते मिताई
0: का मतलब है देखना चाहती हूँ। ये क्रिया
4: मिरु
0: यानी देखना के ते रूप
4: मिते
0: के बाद
4: मिताई
0: लगाकर बना है।
1: तो अब ये बातचीत फिर से सुनिए और उत्तर दोहराइए।
4: निहोन दे नानी गा शिताई देसु का? सो देसु ने, सुमो वो मिते मिताई देसु।
0: अब इच्छा बताने का अभ्यास करते हैं। मान लीजिए आप जापान में फुजी पर्वत की चढ़ाई करना चाहते हैं। फुजी पर्वत चढ़ना को जापानी भाषा में कहेंगे
4: फुजीसान नी नोबोरु, फुजीसान नी नोबोरु।
0: और क्रिया
4: नोबोरु
0: यानी चढ़ना का ते रूप है
4: नोबोत्ते, नोबोत्ते।
0: तो कोशिश कीजिए।
6: फुजीसान नी नोबोत्ते मिताई देसु। फुजीसान नी नोबोत्ते मिताई देसु।
1: अब बारी है आज के सहज वाक्य की, जो ताम की पंक्ति है। आप भी याद कर लीजिए।
2: स्कोशी दाके देसु।
4: स्कोशी दाके देसु
0: का अर्थ है थोड़ा बहुत ही। अगर किसी ने आपसे पूछा कि आपको जापानी भाषा आती है या नहीं, तो आप ये जवाब दे सकते हैं। हो सकता है कि उसके बाद वे आपसे आसान जापानी में बात करें। अब ये वाक्य अलग अलग आवाजों में सुन लीजिए।
7: स्कोशी दाके देसु।
8: स्कोशी दाके देसु।
7: स्कोशी दाके देसु।
1: तो इसे सुनिए और बोलने का अभ्यास कीजिए।
4: स्कोशी दाके देसु।
0: दोस्तों, अब आज की बातचीत एक बार फिर सुन लेते हैं।
9: कोनिचिवा, वशी वा तामु देसु।
3: अ, बोकु युकी देसु। तामु सान, निहोंगो गा देकिरु देसु ने।
9: स्कोशी दाके देसु। राजियो दे बेनक्यो शिमाशिता।
3: सुगोई देसु ने।
9: 日本へ行ってみたいです。
3: ぜひ来てください。僕が案内しますよ。
10: ハルさんの知恵袋。
1: अब बारी है अंश हारू जी की सलाह की। आज का विषय है सुमो पहलवानी, जिसका हमने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था।
0: सुमो जापान का पारंपरिक खेल है। इसके मैच अक्सर टीवी पर दिखाए जाते हैं। तगड़े पहलवानों को एक दूसरे से टकराते हुए देखना अद्भुत लगता है।
1: इस खेल में जो पहलवान अपने प्रतिद्वंद्वी को पहले धराशायी कर देता है या अखाड़े से बाहर खदेड़ देता है, उसकी जीत होती है।
0: सुमो महास्पर्धाओं का आयोजन साल में 6 बार विषम संख्या वाले महीनों में होता है। ये स्पर्धाएं टोक्यो, ओसाका, नागोया और क्यूशु इत्यादि में आयोजित की जाती हैं। इनके टिकट मिलना आसान नहीं होता।
1: निहोन सुमो क्योकाई यानी जापान सुमो संघ की वेबसाइट पर इन आयोजनों से संबंधित जानकारी अंग्रेजी में भी उपलब्ध है। अगर टिकट ना भी मिले तो आप अखाड़ों में सुमो पहलवानों का अभ्यास देखने जा सकते हैं।
0: अखाड़े को यहाँ हेया कहते हैं और हर अखाड़े का एक उस्ताद होता है जो पहलवानों को सिखाता है। कुछ अखाड़े आम लोगों को सुबह का अभ्यास देखने देते हैं।
1: दोस्तों, आशा है बोलचाल की जापानी का आज का पाठ आपको पसंद आया होगा।
0: अगले पाठ में मिया तस्वीरें खींचने के लिए नागानो जाएंगी। तब तक के लिए सायोनारा।

ये NHK World Japan की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज़ पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है UTC अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समय अनुसार 3 जून बुधवार रात 11:30 बजे शांगविला जैन और वायला खवानों से सुने समाचार। भीषण उष्ण कटिबंधीय तूफान छांगमी चीबा प्रिफेक्चर के दक्षिण में समुद्र के ऊपर से गुजर रहा है। कांतो और तोहोकू क्षेत्र के लोगों को भूस्खलन, बाढ़ और तेज हवाओं के प्रति सतर्क रहने की सलाह दी गई है। जापान मौसम विज्ञान एजेंसी ने बुधवार को टोक्यो के कुछ हिस्सों में भारी बारिश और भूस्खलन के लिए लेवल 4 की आपात चेतावनी जारी की थी। हालांकि अब यह चेतावनी हटा ली गई है। टोक्यो की कई नदियों के लिए भी बाढ़ की आशंका को लेकर लेवल 4 की आपात चेतावनी जारी की गई थी। अब यह चेतावनी भी हटा ली गई है। छांगमी तूफान बृहस्पतिवार दोपहर तक 24 घंटों में कांतो और तोहोकू क्षेत्रों में 120 मिलीमीटर तक बारिश ला सकता है। अमरीकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का कहना है कि ईरान के नेता अपने परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत के लिए राजी हो सकते हैं। उनका यह बयान ऐसे समय आया है जब अमरीका और ईरान के बीच बातचीत ठप होती दिख रही है। रूबियो ने मंगलवार को सीनेट की विदेश संबंध समिति में सांसदों से कहा कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलना पहली शर्त है। उन्होंने कहा कि जहाजों का सुरक्षित और निर्बाध आवागमन सुनिश्चित करना आगे बढ़ने का आधार है। हालांकि उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि केवल हॉर्मुज जलमार्ग को फिर से खोलने से ईरान को प्रतिबंधों में छूट नहीं मिलेगी। रूबियो ने कहा कि प्रतिबंधों में किसी भी प्रकार की छूट के लिए शर्त होगी, जिसका अर्थ है कि जिन कारणों से ये प्रतिबंध लगाए गए थे उन कारणों के बदले में छूट मिलेगी और वह है उनका परमाणु कार्यक्रम। 2025 में जापानी नागरिकों के जन्मे बच्चों की संख्या रिकॉर्ड निचले स्तर पर रही। जापान के स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि 2024 की तुलना में पैदा हुए बच्चों की संख्या 14,937 घटकर 6,71,236 रही। यह आंकड़ा लगातार 10 वर्षों से घटता चला आ रहा है और 1899 में रिकॉर्ड रखना शुरू होने के बाद से सबसे कम है। राष्ट्रीय जनसंख्या एवं सामाजिक सुरक्षा अनुसंधान संस्थान ने

तीन साल पहले अनुमान लगाया था कि 2040 के दशक में जापान में जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या घटकर 6,70,000 के आसपास हो जाएगी, लेकिन यह स्तर करीब 15 साल पहले ही आ पहुंचा है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1949 में जन्म दर चरम पर थी, जब जन्मे बच्चों की संख्या 26 लाख से अधिक थी। जापान की कुल प्रजनन दर यानी जीवन काल में एक महिला द्वारा पैदा किए जाने वाले बच्चों की अनुमानित संख्या पिछले वर्ष घटकर रिकॉर्ड 1.14 पर आ गई, जो 0.01 की गिरावट है। 1947 में इस आंकड़े का रिकॉर्ड रखना शुरू हुआ था। टोक्यो शेयर बाजार के मुख्य सूचकांकों ने बुधवार को अब तक के उच्चतम स्तर को छुआ। निवेशकों ने एआई की बढ़ती मांग पर दाव लगाते हुए हाईटेक शेयरों को प्राथमिकता दी। निक्के 225 सूचकांक 2.5% बढ़कर 68,402 पर पहुंच गया। यह पहली बार 68,000 के पार बंद हुआ। दिन के शुरुआती दौर में यह 68,786 के उच्चतम स्तर पर चढ़ गया था। सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट से संबंधित शेयरों ने इस वृद्धि में अग्रणी भूमिका निभाई है। व्यापक टॉपिक सूचकांक ने पहली बार 4,000 से अधिक के स्तर को छुआ। बाद में यह उस स्तर से थोड़ा नीचे बंद हुआ, लेकिन 1.8% की बढ़त के साथ रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया।

0: ये समाचार एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: फुकुशिमा दाइची परमाणु ऊर्जा संयंत्र के संचालक का कहना है कि उसने रिएक्टर नंबर 2 के भंडारण कक्ष से ईंधन की छड़ें हटानी शुरू कर दी हैं। टोक्यो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी टेपको ने मंगलवार दोपहर को ये प्रक्रिया शुरू की। टेपको ने परमाणु ईंधन को सुरक्षित रूप से ठंडा न कर पाने की स्थिति में समस्या का खतरा कम करने के लिए इन छड़ों को हटाने का निर्णय लिया है। 2011 में परमाणु ऊर्जा संयंत्र में हुई दुर्घटना के 15 साल बाद भी रिएक्टर नंबर 2 के भंडारण कक्ष में कुल 615 छड़ें रखी हुई हैं। इनमें से 587 इस्तेमालशुदा हैं, जबकि 28 का उपयोग नहीं हुआ। श्रमिकों ने मंगलवार को रिमोट से संचालित एक विशेष क्रेन का उपयोग करके इस्तेमाल न की गई छड़ों को हटाकर उन्हें धातु के कंटेनरों में रखना शुरू कर दिया। भविष्य में इन्हें एक उन्नत प्रशीतन प्रणाली वाले सुविधा केंद्र में स्थानांतरित किया जाएगा। टेपको की अगले 2 वर्षों में सभी 615 छड़े निकालने की योजना है। उसका लक्ष्य वित्त वर्ष 2028 की दूसरी छमाही में इस प्रक्रिया को पूरा करना है। जापान सरकार की एक विशेषज्ञ समिति ने बच्चों द्वारा सोशल मीडिया के उपयोग पर चर्चा करते हुए उसके संचालकों से सख्त आयु सत्यापन प्रणाली शुरू करने और बच्चों को बढ़ते जोखिमों से बचाने के लिए उपाय करने का आह्वान किया है। सलाहकार समिति ने मंगलवार को आंतरिक मामलों एवं संचार मंत्रालय को एक मसौदा रिपोर्ट पेश की। नाबालिगों को धमकाने और आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने के लिए सोशल मीडिया का दुरुपयोग किया जा रहा है। रिपोर्ट में बताया गया कि सोशल मीडिया के व्यापक उपयोग से कई तरह के जोखिम पैदा होते हैं, जिनसे निपटना जरूरी है, जैसे कि विभिन्न सूचनाओं का प्रसार और संचार, साथ ही सोशल मीडिया की लत सहित मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं। इन समस्याओं को उजागर करते हुए मसौदा रिपोर्ट में तर्क दिया गया है कि सोशल मीडिया संचालक अपनी सेवाओं को इस तरह से बनाएं जिससे बच्चों की सुरक्षा हो सके। इसमें आयु सत्यापन में सख्ती और बच्चों को सुरक्षित रूप से सोशल मीडिया का उपयोग करने में सक्षम बनाने वाली प्रणाली को डिफॉल्ट सेटिंग के रूप में शामिल करने की मांग की गई है। थाईलैंड की गर्म जलवायु में ठंडे मीठे पेय पदार्थ लोकप्रिय हैं, लेकिन चीनी के अत्यधिक सेवन से होने वाले स्वास्थ्य जोखिमों को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं। इस वजह से थाईलैंड ने लोगों की आदतों में बदलाव लाने का प्रयास शुरू किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि थाईलैंड में लोग प्रतिदिन औसतन 21 चम्मच चीनी का सेवन करते हैं। यह विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा सिफारिश मात्रा से 3 गुना से भी अधिक है। सरकार ने अब रेस्तरां और कैफे के लिए दिशा निर्देशों में संशोधन किया है। फरवरी में जारी मानकों के अनुसार कोल्ड कॉफी में चीनी की अनुशंसित मात्रा प्रति सर्विंग 7 चम्मच से घटाकर 3 चम्मच कर दी गई है। इसका पालन करना स्वैच्छिक है, लेकिन बैंकॉक की एक कॉफी शॉप अब ऐसे पेय पदार्थ बेच रही है जिनमें पहले की तुलना में चीनी की मात्रा आधी है। ये चलन अब दक्षिण पूर्व एशिया में भी बढ़ रहा है। सिंगापुर ने खाद्य प्रतिष्ठानों में परोसे जाने वाले पेय पदार्थों पर चीनी की मात्रा का लेबल लगाना अनिवार्य कर दिया है। वियतनाम अगले साल अधिक चीनी वाले पेय पदार्थों पर कर लगाने की योजना बना रहा है।
0: इसके साथ ही एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है।

0: एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम बोलचाल की जापानी में आपका स्वागत है। मैं हूं चिन्मय दीक्षित।
1: और मैं हूं सुमिता भट्टाचार्य जी। तो आइए मजे से सीखें जापानी भाषा।
0: आज 14वें पाठ में हम सीखेंगे अपनी इच्छा बताना।
1: वियतनाम से जापान आई विदेशी छात्रा ताम हारूसान हाउस में रहती है। पिछले पाठ में ताम हारू जी और मियाँ से बात कर रही थी और उसने शर्माते हुए कहा था कि जापान में किसी दोस्त से मिलना चाहती है।
0: आज वो वियतनाम में उस दोस्त के साथ बिताया समय याद कर रही है। जापान आने से पहले ताम वियतनाम के एक प्राथमिक स्कूल में स्वयंसेवी थी। एक दिन उसके स्कूल में जापान से संगीत का एक विद्यार्थी आया और उसने बच्चों के लिए पियानो बजाया। उसका नाम यूकी था। ताम को यूकी की प्रस्तुति बहुत पसंद आई और उसने हिम्मत जुटाकर उससे जापानी भाषा में बात की।
1: तो आज के पाठ में सुनते हैं उन पुराने दिनों की बातचीत।
2: कोनिच्वा, वतशी वा ताम देस।
3: बोकु यूकी देस। ताम सान, निहोंगो गा देकिरु देस ने।
2: 少しだけです。ラジオで勉強しました。
3: すごいですね。
2: 日本へ行ってみたいです。
3: ぜひ来てください。僕が案内しますよ。
0: अब इस बातचीत को फिर से हर वाक्य के अर्थ के साथ सुनते हैं। पहले ताम ने यूकी से कहा,
2: こんにちは。
1: नमस्ते।
2: 私はタムです。
1: मैं ताम हूँ।
0: यूकी ने उत्तर दिया,
3: बोकु यूकी देस।
0: ओ, मैं यूकी हूँ।
3: ताम सान, निहोंगो गा देकिरु देस ने।
0: ताम जी, आपको तो जापानी भाषा आती है।
1: तब ताम ने कहा,
2: स्कोशी दाके देस।
1: थोड़ी बहुत ही।
2: राजियो दे बेंक्यो शिमाश्ता।
1: रेडियो से पढ़ाई की।
0: फिर यूकी ने प्रशंसा करते हुए कहा,
3: सुगोई देस ने।
0: अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है।
1: उसके बाद ताम ने अपनी इच्छा बताई,
2: निहोंगे इत्ते मिताई देस।
1: जापान जाकर देखना चाहती हूँ।
0: इस पर यूकी ने खुशी से कहा,
3: ज़ेही किते कुदासाई।
0: जरूर आइएगा।
3: बोकु गा अन्नाई शिमास्यो।
0: मैं घुमाने ले चलूंगा।
1: तो अब समझ आया कि ताम जापान में किससे मिलना चाहती है। संगीत की पढ़ाई कर रहे जापानी छात्र यूकी से, जिससे वो वियतनाम में मिली थी। देखते हैं आगे क्या होता है।
0: आज का मुख्य वाक्य है,
2: निहोंगे इत्ते मिताई देस।
0: यानी जापान जाकर देखना चाहती हूँ। ये वाक्य याद करके आप अपनी इच्छा बता सकते हैं।
1: इसमें
4: निहोंग
1: का मतलब है जापान। उसके बाद लगा है कारक
4: ए,
1: जो दिशा बताता है।
4: इत्ते मिताई देस
1: का अर्थ है जाकर देखना चाहती हूँ।
0: आज के वाक्य में ध्यान देने वाली बात यह है कि अपनी इच्छा बताने के लिए क्रिया के ते रूप के बाद
4: मिताई
0: लगाते हैं।
1: यहाँ क्रिया है इकु यानी जाना और उसका ते रूप है इत्ते। उसके बाद मिताई लगाकर बना है इत्ते मिताई यानी जाकर देखना चाहती हूँ। और अंत में लगा है दिस, जिससे पता चलता है कि ये वाक्य का विनम्र रूप है।
0: पिछले पाठ में हमने सीखा था इकिताई देस यानी जाना चाहती हूँ,
4: ताई देस
0: और
4: ते मिताई देस
0: में अंतर ये है कि जब आप कुछ करना चाहते हो तब कहेंगे
4: ताई देस,
0: और जब आप पहली बार कुछ करना चाहते हो या कुछ करके देखना चाहते हो जो मुश्किल भी हो सकता हो तब आप कहेंगे
4: ते मिताई देस।
1: तो सुनिए और बोलने का अभ्यास कीजिए।
4: इत्ते मिताई देस।
1: अब सुनते हैं एक छोटी सी बातचीत जिसमें एक महिला बता रही हैं कि वे जापान में क्या करके देखना चाहती हैं।
5: निहोन दे नानी गा शिताई देस का?
6: सो देस ने, सुमो वो मिते मिताई देस।
0: और अब समझ लेते हैं इसका अर्थ। पहले आदमी ने पूछा,
5: निहोन दे नानी गा शिताई देस का?
0: जापान में क्या करना चाहती हैं?
1: तो महिला ने जवाब दिया,
6: सो देसु ने।
0: इसका इस्तेमाल उत्तर देने से पहले सोचते समय करते हैं। महिला ने आगे कहा,
6: सुमो वो मिते मिताई देस।
1: सुमो पहलवानी देखना चाहती हूँ।
4: सुमो
0: का अर्थ है सुमो पहलवानी,
4: मिते मिताई
0: का मतलब है देखना चाहती हूँ। ये क्रिया
4: मिरु
0: यानी देखना के ते रूप
4: मिते
0: के बाद
4: मिताई
0: लगाकर बना है।
1: तो अब ये बातचीत फिर से सुनिए और उत्तर दोहराइए।
4: निहोन दे नानी गा शिताई देस का? सो देस ने, सुमो वो मिते मिताई देस।
0: अब इच्छा बताने का अभ्यास करते हैं। मान लीजिए आप जापान में फुजी पर्वत की चढ़ाई करना चाहते हैं। फुजी पर्वत चढ़ना को जापानी भाषा में कहेंगे
4: फुजीसान नी नोबोरु, फुजीसान नी नोबोरु।
0: और क्रिया
4: नोबोरु
0: यानी चढ़ना का ते रूप है
4: नोबोत्ते, नोबोत्ते।
0: तो कोशिश कीजिए।
6: फुजीसान नी नोबोत्ते मिताई देसु, फुजीसान नी नोबोत्ते मिताई देसु।
1: अब बारी है आज के सहज वाक्य की, जो ताम की पंक्ति है। आप भी याद कर लीजिए।
2: स्कोशी दाके देसु,
4: स्कोशी दाके देसु
0: का अर्थ है थोड़ा बहुत ही। अगर किसी ने आपसे पूछा कि आपको जापानी भाषा आती है या नहीं, तो आप ये जवाब दे सकते हैं। हो सकता है कि उसके बाद वे आपसे आसान जापानी में बात करें। अब ये वाक्य अलग अलग आवाजों में सुन लीजिए।
7: स्कोशी दाके देसु,
8: स्कोशी दाके देसु,
7: स्कोशी दाके देसु।
1: तो इसे सुनिए और बोलने का अभ्यास कीजिए।
4: स्कोशी दाके देसु।
0: दोस्तों, अब आज की बातचीत एक बार फिर सुन लेते हैं।
9: कोनिचिवा, वशी वा तामु देसु।
3: आ, बोकु युकी देसु। तामु सान, निहोंगो गा देकिरु देसु ने।
9: स्कोशी दाके देसु, राजियो दे बेनक्यो शिमाशिता।
3: सुगोई देसु ने।
9: 日本へ行ってみたいです。
3: ぜひ来てください。僕が案内しますよ。
10: ハルさんの知恵袋。
1: अब बारी है अंश हारू जी की सलाह की। आज का विषय है सुमो पहलवानी, जिसका हमने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था।
0: सुमो जापान का पारंपरिक खेल है। इसके मैच अक्सर टीवी पर दिखाए जाते हैं। तगड़े पहलवानों को एक दूसरे से टकराते हुए देखना अद्भुत लगता है।
1: इस खेल में जो पहलवान अपने प्रतिद्वंद्वी को पहले धराशायी कर देता है या अखाड़े से बाहर खदेड़ देता है, उसकी जीत होती है।
0: सुमो महास्पर्धाओं का आयोजन साल में 6 बार विषम संख्या वाले महीनों में होता है। ये स्पर्धाएं टोक्यो, ओसाका, नागोया और क्यूशु इत्यादि में आयोजित की जाती हैं। इनके टिकट मिलना आसान नहीं होता।
1: निहोन सुमो क्योकाई यानी जापान सुमो संघ की वेबसाइट पर इन आयोजनों से संबंधित जानकारी अंग्रेजी में भी उपलब्ध है। अगर टिकट ना भी मिले तो आप अखाड़ों में सुमो पहलवानों का अभ्यास देखने जा सकते हैं।
0: अखाड़े को यहाँ हेया कहते हैं और हर अखाड़े का एक उस्ताद होता है जो पहलवानों को सिखाता है। कुछ अखाड़े आम लोगों को सुबह का अभ्यास देखने देते हैं।
1: दोस्तों, आशा है बोलचाल की जापानी का आज का पाठ आपको पसंद आया होगा।
0: अगले पाठ में मिया तस्वीरें खींचने के लिए नागानो जाएंगी। तब तक के लिए सायोनारा।

0: ये खबरें एनएचके वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से नशर की जा रही हैं। अब मजीद खबरें। तबाहशुदा फुकुशिमा दाइची जोहरी बिजली घर की मुंतजिम कंपनी का कहना है कि उसने रिएक्टर नंबर 2 की इमारत में मौजूद एक स्टोरेज पूल से फ्यूल रॉड असेंबलियों को हटाना शुरू कर दिया है। टोक्यो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी टेपको ने मंगल की दोपहर को इस अमल का आगाज किया। टेपको ने जोहरी ईंधन महफूज अंदाज में ठंडा ना हो सकने की सूरत में मुसीबत के खतरे को कम करने के लिए इन असेंबलियों को हटाने का फैसला किया है। इस एटमी बिजली घर में 2011 में होने वाले हादसे के 15 साल बाद भी रिएक्टर नंबर 2 की इमारत में कुल 615 असेंबलियां स्टोरेज पूल में मौजूद हैं। इनमें से 587 इस्तेमाल हो चुकी हैं, जबकि 28 गैर इस्तेमाल शुदा हैं। मंगल को कारकुनों ने दूर से चलाई जा सकने वाली मखसूस क्रेन का इस्तेमाल करते हुए गैर इस्तेमाल शुदा असेंबलियों को हटाना और उन्हें धाती कंटेनरों में रखना शुरू किया। उन्हें मुस्तकबिल में ज्यादा जदीद कूलिंग सिस्टम से आरास्ता एक अलग मरकज में मुंतकिल किया जाएगा। टेपको अगले 2 सालों में तमाम 615 असेंबलियों को निकालने का इरादा रखती है। उसका हदफ है कि माली साल 2028 की दूसरी शिशमाही में ये अमल मुकम्मल कर लिया जाए। बच्चों के सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर बहस करने वाले जापानी हुकूमत के माहिरीन के पैनल ने मुंतजमीन पर जोर दिया है कि वो उम्र की तस्दीक का सख्त निजाम मुतारिफ कराएं और बच्चों को सोशल मीडिया के दौर में मतनवे खतरात से बचाने के लिए इकदाम करें। मशावरती पैनल ने मंगल को वजारत अमूर दाखिला व मवासलात को एक रिपोर्ट का मुसविदा पेश किया। सोशल मीडिया बच्चों को सताने और उन्हें मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलविस करने की तरगीब के लिए गलत इस्तेमाल होता रहा है। रिपोर्ट में निशानदेही की गई कि सोशल मीडिया के वसी पैमाने पर इस्तेमाल ने कई किस्म के खतरात को जन्म दिया है, जिनसे निमटने की जरूरत है। इनमें सोशल मीडिया की लत लगने समेत मुख्तलिफ मालूमात की तरसील और फैलाव के साथ साथ जहनी सेहत के मसाइल शामिल हैं। इस तरह के मसाइल की निशानदेही करते हुए मुसविदा रिपोर्ट में कहा गया है कि सोशल मीडिया के ऑपरेटर्स को चाहिए कि वो अपनी खिदमात को इस तरह डिजाइन करें कि बच्चों का तहफ्फुज़ किया जा सके। इसमें उम्र की सख्त तस्दीक और एक ऐसे निज़ाम को शामिल करने पर जोर दिया गया है जो बच्चों को सोशल मीडिया डिफॉल्ट सेटिंग के साथ साथ महफूज तरीके से इस्तेमाल करने के काबिल बना सके। थाईलैंड की गर्म आबो हवा में ठंडे और मीठे मशरूबात बहुत मकबूल हैं, ताहम ज्यादा चीनी के इस्तेमाल से सेहत को लाहक होने वाले खतरात के बारे में तश्वीश बढ़ रही है। इस सूरत हाल के सबब मुल्की इंतजामिया लोगों की आदत को बदलने की कोशिश कर रही है। सेहत आमा की वजारत का कहना है कि थाई बाशिंदे रोजाना औसतन 21 चाय के चम्मच चीनी इस्तेमाल करते हैं। ये आलमी इदारे सेहत की तजवीज करदा मकदार से 3 गुना ज्यादा है। हुकूमत ने इस मसले से निमटने के लिए रेस्तरानों और कैफेज के लिए गाइडलाइंस तब्दील की हैं। फरवरी में जारी करदा मेयारात में आइस्ड कॉफी में चीनी की सिफारिश करदा मकदार को 7 चाय के चम्मच फी कप से कम करके 3 कर दिया गया है। नए मेयारात पर अमल दरामद करना रजाकाराना है, लेकिन बैंकॉक की एक कॉफी शॉप अब पहले की निस्बत चीनी की निसफ मकदार के साथ मशरूबात पेश कर रही है। ये रुझान अब पूरे जनूब मशरकी एशिया में फैल रहा है। सिंगापुर ने खाने पीने की दुकानों पर पेश किए जाने वाले मशरूबात के लिए चीनी की मकदार की लेबलिंग को लाजमी करार दे दिया है। वियतनाम अगले साल ज्यादा चीनी वाले मशरूबात पर टैक्स लगाने का इरादा रखता है।
1: इसके साथ ही एनएचके वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से खबरें खत्म हुईं।

ये NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज़ पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है UTC अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समय अनुसार 3 जून बुधवार रात 11:30 बजे शांगविला चैन और वायला खवानो से सुने समाचार। भीषण उष्णकटिबंधीय तूफान छांगमी चीबा प्रिफेक्चर के दक्षिण में समुद्र के ऊपर से गुजर रहा है। कांतो और तोहोकु क्षेत्र के लोगों को भूस्खलन, बाढ़ और तेज हवाओं के प्रति सतर्क रहने की सलाह दी गई है। जापान मौसम विज्ञान एजेंसी ने बुधवार को टोक्यो के कुछ हिस्सों में भारी बारिश और भूस्खलन के लिए लेवल 4 की आपात चेतावनी जारी की थी। हालांकि अब यह चेतावनी हटा ली गई है। टोक्यो की कई नदियों के लिए भी बाढ़ की आशंका को लेकर लेवल 4 की आपात चेतावनी जारी की गई थी। अब यह चेतावनी भी हटा ली गई है। छांगमी तूफान बृहस्पतिवार दोपहर तक 24 घंटों में कांतो और तोहोकु क्षेत्रों में 120 मिलीमीटर तक बारिश ला सकता है। अमरीकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का कहना है कि ईरान के नेता अपने परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत के लिए राजी हो सकते हैं। उनका यह बयान ऐसे समय आया है जब अमरीका और ईरान के बीच बातचीत ठप होती दिख रही है। रूबियो ने मंगलवार को सीनेट की विदेश संबंध समिति में सांसदों से कहा कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलना पहली शर्त है। उन्होंने कहा कि जहाजों का सुरक्षित और निर्बाध आवागमन सुनिश्चित करना आगे बढ़ने का आधार है। हालांकि उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि केवल हॉर्मुज जलमार्ग को फिर से खोलने से ईरान को प्रतिबंधों में छूट नहीं मिलेगी। रूबियो ने कहा कि प्रतिबंधों में किसी भी प्रकार की छूट के लिए शर्त होगी, जिसका अर्थ है कि जिन कारणों से ये प्रतिबंध लगाए गए थे उन कारणों के बदले में छूट मिलेगी और वह है उनका परमाणु कार्यक्रम। 2025 में जापानी नागरिकों के जन्मे बच्चों की संख्या रिकॉर्ड निचले स्तर पर रही। जापान के स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि 2024 की तुलना में पैदा हुए बच्चों की संख्या 14,937 घटकर 6,71,236 रही। यह आंकड़ा लगातार 10 वर्षों से घटता चला आ रहा है और 1899 में रिकॉर्ड रखना शुरू होने के बाद से सबसे कम है। राष्ट्रीय जनसंख्या एवं सामाजिक सुरक्षा अनुसंधान संस्थान ने 3 साल पहले अनुमान लगाया था कि 2040 के दशक में जापान में जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या घटकर 6,70,000 के आसपास हो जाएगी, लेकिन यह स्तर करीब 15 साल पहले ही आ पहुंचा है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1949 में जन्म दर चरम पर थी, जब जन्मे बच्चों की संख्या 26 लाख से अधिक थी। जापान की कुल प्रजनन दर यानी जीवन काल में एक महिला द्वारा पैदा किए जाने वाले बच्चों की अनुमानित संख्या पिछले वर्ष घटकर रिकॉर्ड 1.14 पर आ गई, जो 0.01 की गिरावट है। 1947 में इस आंकड़े का रिकॉर्ड रखना शुरू हुआ था। टोक्यो शेयर बाजार के मुख्य सूचकांकों ने बुधवार को अब तक के उच्चतम स्तर को छुआ। निवेशकों ने एआई की बढ़ती मांग पर दाव लगाते हुए हाईटेक शेयरों को प्राथमिकता दी। निक्के 225 सूचकांक 2.5% बढ़कर 68,402 पर पहुंच गया। यह पहली बार 68,000 के पार बंद हुआ। दिन के शुरुआती दौर में यह 68,786 के उच्चतम स्तर पर चढ़ गया था। सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट से संबंधित शेयरों ने इस वृद्धि में अग्रणी भूमिका निभाई है। व्यापक टॉपिक सूचकांक ने पहली बार 4,000 से अधिक के स्तर को छुआ। बाद में यह उस स्तर से थोड़ा नीचे बंद हुआ, लेकिन 1.8% की बढ़त के साथ रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया।

0: ये समाचार एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: फुकुशिमा दाइची परमाणु ऊर्जा संयंत्र के संचालक का कहना है कि उसने रिएक्टर नंबर 2 के भंडारण कक्ष से ईंधन की छड़ें हटानी शुरू कर दी हैं। टोक्यो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी टेपको ने मंगलवार दोपहर को ये प्रक्रिया शुरू की। टेपको ने परमाणु ईंधन को सुरक्षित रूप से ठंडा न कर पाने की स्थिति में समस्या का खतरा कम करने के लिए इन छड़ों को हटाने का निर्णय लिया है। 2011 में परमाणु ऊर्जा संयंत्र में हुई दुर्घटना के 15 साल बाद भी रिएक्टर नंबर 2 के भंडारण कक्ष में कुल 615 छड़ें रखी हुई हैं। इनमें से 587 इस्तेमालशुदा हैं, जबकि 28 का उपयोग नहीं हुआ। श्रमिकों ने मंगलवार को रिमोट से संचालित एक विशेष क्रेन का उपयोग करके इस्तेमाल न की गई छड़ों को हटाकर उन्हें धातु के कंटेनरों में रखना शुरू कर दिया। भविष्य में इन्हें एक उन्नत प्रशीतन प्रणाली वाले सुविधा केंद्र में स्थानांतरित किया जाएगा। टेपको की अगले 2 वर्षों में सभी 615 छड़े निकालने की योजना है। उसका लक्ष्य वित्त वर्ष 2028 की दूसरी छमाही में इस प्रक्रिया को पूरा करना है। जापान सरकार की एक विशेषज्ञ समिति ने बच्चों द्वारा सोशल मीडिया के उपयोग पर चर्चा करते हुए उसके संचालकों से सख्त आयु सत्यापन प्रणाली शुरू करने और बच्चों को बढ़ते जोखिमों से बचाने के लिए उपाय करने का आह्वान किया है। सलाहकार समिति ने मंगलवार को आंतरिक मामलों एवं संचार मंत्रालय को एक मसौदा रिपोर्ट पेश की। नाबालिगों को धमकाने और आपराधिक गतिविधियों में

0: इस सोशल मीडिया के व्यापक उपयोग से कई तरह के जोखिम पैदा होते हैं जिनसे निपटना जरूरी है, जैसे कि विभिन्न सूचनाओं का प्रसार और संचार, साथ ही सोशल मीडिया की लत सहित मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं। इन समस्याओं को उजागर करते हुए मसौदा रिपोर्ट में तर्क दिया गया है कि सोशल मीडिया संचालक अपनी सेवाओं को इस तरह से बनाएं जिससे बच्चों की सुरक्षा हो सके। इसमें आयु सत्यापन में सख्ती और बच्चों को सुरक्षित रूप से सोशल मीडिया का उपयोग करने में सक्षम बनाने वाली प्रणाली को डिफॉल्ट सेटिंग के रूप में शामिल करने की मांग की गई है। थाईलैंड की गर्म जलवायु में ठंडे मीठे पेय पदार्थ लोकप्रिय हैं, लेकिन चीनी के अत्यधिक सेवन से होने वाले स्वास्थ्य जोखिमों को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं। इस वजह से थाईलैंड ने लोगों की आदतों में बदलाव लाने का प्रयास शुरू किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि थाईलैंड में लोग प्रतिदिन औसतन 21 चम्मच चीनी का सेवन करते हैं। यह विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा सिफारिश मात्रा से 3 गुना से भी अधिक है। सरकार ने अब रेस्तरां और कैफे के लिए दिशा निर्देशों में संशोधन किया है। फरवरी में जारी मानकों के अनुसार कोल्ड कॉफी में चीनी की अनुशंसित मात्रा प्रति सर्विंग 7 चम्मच से घटाकर 3 चम्मच कर दी गई है। इसका पालन करना स्वैच्छिक है, लेकिन बैंकॉक की एक कॉफी शॉप अब ऐसे पेय पदार्थ बेच रही है जिनमें पहले की तुलना में चीनी की मात्रा आधी है। ये चलन अब दक्षिण पूर्व एशिया में भी बढ़ रहा है। सिंगापुर ने खाद्य प्रतिष्ठानों में परोसे जाने वाले पेय पदार्थों पर चीनी की मात्रा का लेबल लगाना अनिवार्य कर दिया है। वियतनाम अगले साल अधिक चीनी वाले पेय पदार्थों पर कर लगाने की योजना बना रहा है।
1: इसके साथ ही NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है।

0: एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम बोलचाल की जापानी में आपका स्वागत है। मैं हूं चिन्मय दीक्षित।
1: और मैं हूं सुमिता भट्टाचार्य जी। तो आइए मजे से सीखें जापानी भाषा।
0: आज 14वें पाठ में हम सीखेंगे अपनी इच्छा बताना।
1: वियतनाम से जापान आई विदेशी छात्रा ताम हारूसान हाउस में रहती है। पिछले पाठ में ताम हारू जी और मिया से बात कर रही थी और उसने शर्माते हुए कहा था कि जापान में किसी दोस्त से मिलना चाहती है।
0: आज वो वियतनाम में उस दोस्त के साथ बिताया समय याद कर रही है। जापान आने से पहले ताम वियतनाम के एक प्राथमिक स्कूल में स्वयंसेवी थी। एक दिन उसके स्कूल में जापान से संगीत का एक विद्यार्थी आया और उसने बच्चों के लिए पियानो बजाया। उसका नाम यूकी था। ताम को यूकी की प्रस्तुति बहुत पसंद आई और उसने हिम्मत जुटाकर उससे जापानी भाषा में बात की।
1: तो आज के पाठ में सुनते हैं उन पुराने दिनों की बातचीत।
2: कोनिच्वा, वतशी वा ताम देस।
3: बोकु यूकी देस। ताम सान, निहोंगो गा देकिरु देस ने।
2: 少しだけです。ラジオで勉強しました。
3: すごいですね。
2: 日本へ行ってみたいです。
3: ぜひ来てください。僕が案内しますよ。
0: अब इस बातचीत को फिर से हर वाक्य के अर्थ के साथ सुनते हैं। पहले ताम ने यूकी से कहा,
2: こんにちは。
1: नमस्ते।
2: 私はタムです。
1: मैं ताम हूँ।
0: यूकी ने उत्तर दिया,
3: あ僕、ユキです。
0: お、मैं यूकी हूँ।
3: タムさん、日本語ができるんですね。
0: タム जी, आपको तो जापानी भाषा आती है?
1: तब ताम ने कहा,
2: 少しだけです。
1: थोड़ी बहुत ही।
2: ラジオで勉強しました。
1: रेडियो से पढ़ाई की।
0: फिर यूकी ने प्रशंसा करते हुए कहा,
3: すごいですね。
0: अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है।
1: उसके बाद ताम ने अपनी इच्छा बताई।
2: 日本へ行ってみたいです。
1: जापान जाकर देखना चाहती हूँ।
0: इस पर यूकी ने खुशी से कहा,
3: ぜひ来てください。
0: जरूर आइएगा।
3: 僕が案内しますよ。
0: मैं घुमाने ले चलूंगा।
1: तो अब समझ आया।

0: कि ताम जापान में किससे मिलना चाहती है। संगीत की पढ़ाई कर रहे जापानी छात्र यूकी से, जिससे वो वियतनाम में मिली थी। देखते हैं आगे क्या होता है।
1: आज का मुख्य वाक्य है यानी जापान जाकर देखना चाहती हूँ। ये वाक्य याद करके आप अपनी इच्छा बता सकते हैं।
0: इसमें
2: निहोंग
0: का मतलब है जापान, उसके बाद लगा है कारक
2: ए
0: जो दिशा बताता है।
2: इत्ते मिताई देस
0: का अर्थ है जाकर देखना चाहती हूँ।
1: आज के वाक्य में ध्यान देने वाली बात यह है कि अपनी इच्छा बताने के लिए क्रिया के ते रूप के बाद
2: मिताई
1: लगाते हैं।
0: यहाँ क्रिया है इकु यानी जाना, और उसका ते रूप है इत्ते। उसके बाद मिताई लगाकर बना है इत्ते मिताई यानी जाकर देखना चाहती हूँ, और अंत में लगा है दिस, जिससे पता चलता है कि ये वाक्य का विनम्र रूप है।
1: पिछले पाठ में हमने सीखा था इकिताई देस यानी जाना चाहती हूँ,
2: ताई देस
1: और
2: ते मिताई देस
1: में अंतर ये है कि जब आप कुछ करना चाहते हो तब कहेंगे
2: ताई देस,
1: और जब आप पहली बार कुछ करना चाहते हो या कुछ करके देखना चाहते हो जो मुश्किल भी हो सकता हो तब आप कहेंगे
2: ते मिताई देस।
0: तो सुनिए और बोलने का अभ्यास कीजिए।
2: इत्ते मिताई देस, निहों ये इत्ते मिताई देस।
0: अब सुनते हैं एक छोटी सी बातचीत जिसमें एक महिला बता रही हैं कि वे जापान में क्या करके देखना चाहती हैं।
3: निहों दे नानी गा शिताई देस का?
4: सो देस ने, सुमो वो मिते मिताई देस।
1: और अब समझ लेते हैं इसका अर्थ। पहले आदमी ने पूछा
3: निहों दे नानी गा शिताई देस का,
1: जापान में क्या करना चाहती हैं?
0: तो महिला ने जवाब दिया
4: सो देस ने।
1: इसका इस्तेमाल उत्तर देने से पहले सोचते समय करते हैं। महिला ने आगे कहा
4: सुमो वो मिते मिताई देस,
0: सुमो पहलवानी देखना चाहती हूँ।
2: सुमो
1: का अर्थ है सुमो पहलवानी,
2: मिते मिताई
1: का मतलब है देखना चाहती हूँ। ये क्रिया
2: मीर
1: यानी देखना के ते रूप
2: मिते
1: के बाद
2: मिताई
1: लगाकर बना है।
0: तो अब ये बातचीत फिर से सुनिए और उत्तर दोहराइए।
2: निहों दे नानी गा शिताई देस का? सो देस ने, सुमो वो मिते मिताई देस।
1: अब इच्छा बताने का अभ्यास करते हैं। मान लीजिए आप जापान में फुजी पर्वत की चढ़ाई करना चाहते हैं। फुजी पर्वत चढ़ना को जापानी भाषा में कहेंगे
2: फुजीसान नी नोबोरु, फुजीसान नी नोबोरु।
1: और क्रिया
2: नोबोरु
1: यानी चढ़ना का ते रूप है
2: नोबोत्ते, नोबोत्ते।
1: तो कोशिश कीजिए।
4: फुजीसान नी नोबोत्ते मिताई देस, फुजीसान नी नोबोत्ते मिताई देस।
0: अब बारी है आज के सहज वाक्य की, जो ताम की पंक्ति है। आप भी याद कर लीजिए।
4: स्कोशी दाके देस,
2: स्कोशी दाके देस
1: का अर्थ है थोड़ा बहुत ही। अगर किसी ने आपसे पूछा कि आपको जापानी भाषा आती है या नहीं तो आप ये जवाब दे सकते हैं। हो सकता है कि उसके बाद वे आपसे आसान जापानी में बात करें। अब ये वाक्य अलग अलग आवाजों में सुन लीजिए।
5: स्कोशी दाके देसु,
6: स्कोशी दाके देसु,
7: स्कोशी दाके देसु।
0: तो इसे सुनिए और बोलने का अभ्यास कीजिए।
2: स्कोशी दाके देसु।
1: दोस्तों अब आज की बातचीत एक बार फिर सुन लेते हैं।
8: こんにちは。 私はタムです。
9: あ、僕ユウキです。タムさん、日本語ができるんですね。
8: 少しだけです。ラジオで勉強しました。
9: すごいですね。
8: 日本へ行ってみたいです。
9: ぜひ来てください。僕が案内しますよ。
10: ハルさんの知恵袋。
0: अब बारी है अंश हारू जी की सलाह की। आज का विषय है सुमो पहलवानी, जिसका हमने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था।
1: सुमो जापान का पारंपरिक खेल है। इसके मैच अक्सर टीवी पर दिखाए जाते हैं। तगड़े पहलवानों को एक दूसरे से टकराते हुए देखना अद्भुत लगता है।
0: इस खेल में जो पहलवान अपने प्रतिद्वंद्वी को पहले धराशायी कर देता है या अखाड़े से बाहर खदेड़ देता है, उसकी जीत होती है।
1: सुमो महास्पर्धाओं का आयोजन साल में 6 बार विषम संख्या वाले महीनों में होता है। ये स्पर्धाएं टोक्यो, ओसाका, नागोया और क्यूशु इत्यादि में आयोजित की जाती हैं। इनके टिकट मिलना आसान नहीं होता।
0: निहोन सुमो क्योकाई यानी जापान सुमो संघ की वेबसाइट पर इन आयोजनों से संबंधित जानकारी अंग्रेजी में भी उपलब्ध है। अगर टिकट ना भी मिले तो आप अखाड़ों में सुमो पहलवानों का अभ्यास देखने जा सकते हैं।
1: अखाड़े को यहाँ हेया कहते हैं और हर अखाड़े का एक उस्ताद होता है जो पहलवानों को सिखाता है। कुछ अखाड़े आम लोगों को सुबह का अभ्यास देखने देते हैं।
0: दोस्तों, आशा है बोलचाल की जापानी का आज का पाठ आपको पसंद आया होगा।
1: अगले पाठ में मिया तस्वीरें खींचने के लिए नागानो जाएंगी। तब तक के लिए सायोनारा।

ये खबरें एनएच के वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से नशर की जा रही हैं। अब मजीद खबरें। तबाहशुदा फुकुशिमा दाइची जोहरी बिजली घर की मुंतजिम कंपनी का कहना है कि उसने रिएक्टर नंबर 2 की इमारत में मौजूद एक स्टोरेज पूल से फ्यूल रॉड असेंबलियों को हटाना शुरू कर दिया है। टोक्यो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी टेपको ने मंगल की दोपहर को इस अमल का आगाज किया। टेपको ने जोहरी ईंधन महफूज अंदाज में ठंडा ना हो सकने की सूरत में मुसीबत के खतरे को कम करने के लिए इन असेंबलियों को हटाने का फैसला किया है। इस एटमी बिजली घर में 2011 में होने वाले हादसे के 15 साल बाद भी रिएक्टर नंबर 2 की इमारत में कुल 615 असेंबलियां स्टोरेज पूल में मौजूद हैं। इनमें से 500

0: आदाब।
1: वाताशी वा तामु देस।
0: मैं ताम हूँ।
2: युकी जवाब देता है।
3: आ, बोकु युकी देस।
0: ओ, मैं युकी हूँ।
3: ताम-सान, निहोंगो गा देकिरुन देस ने।
0: ताम-सान, आप जापानी जानती हैं।
2: ताम कहती है।
1: स्कोशी दाके देस।
0: सिर्फ जरा सी।
1: राजियो दे बेंक्यो शिमाश्ता।
0: रेडियो से सीखी है।
2: युकी मुतासिर होकर कहता है।
3: सुगोई देस ने।
0: वाह, बहुत खूब।
2: ताम उसे अपनी एक ख्वाहिश के बारे में बताती है।
1: निहों ए, इत्ते मिताई देस।
0: मैं जापान जाना चाहती हूँ।
2: युकी खुश होकर कहता है।
3: ज़ेही किते कुदासाई।
0: जरूर आइए।
3: बोकु गा अन्नाई शिमास्यो।
0: मैं आपको सैर कराऊंगा।
2: तो ये वो दोस्त है जिससे ताम दोबारा मिलना चाहती है, मौसीकी का तालिब इल्म युकी।
0: देखें ये मुलाकात होती है या नहीं, लेकिन फिलहाल आज का मकालमा एक बार फिर सुनते हैं।
1: कोन्निचिवा, वतासी वा तामु देस।
3: आ, बोकु युकी देस। तामु सान, निहोंगो गा देकिरुन देस ने।
1: स्कोशी दाके देस। ラジオで勉強しました。
3: すごいですね。
1: 日本へ行ってみたいです。
3: ぜひ来てください。僕が案内しますよ。
2: आज के सबक का कलीदी जुमला है, मैं जापान जाना चाहती हूँ।
1: 日本へ行ってみたいです。
2: अगर आप इसे याद कर लें, तो आप भी अपनी किसी ख्वाहिश का इजहार कर सकते हैं।
0: और अब आज के कलीदी जुमले की तशरीह। निहोन के मायने है जापान। इसके बाद का हर्फ जार ए समत को जाहिर करता है और इत्ते मिताई देस जाना चाहती हूँ। अब आज का नुक्ता। ख्वाहिश के इजहार के लिए फेल की ते शक्ल के बाद मिताई लगाया जाता है।
2: फेल जाना यानी इकु की ते शक्ल है इत्ते, तो जाना चाहती हूँ के लिए कहा जाएगा इत्ते मिताई। ठीक है ना अनवर साहब?
0: जी बिल्कुल ठीक। और कलीदी जुमले में आखिर में देस जुमले को शाइस्ता बनाने के लिए है। फेल की ते शक्ल बनाने का तरीका सबक नंबर 7 में बताया गया था। प्रोग्राम की वेबसाइट पर कई फेल ते शक्ल के साथ मौजूद हैं, आप वहां से मजीद मश्क कर सकते हैं।
2: अच्छा अनवर साहब एक बात बताइए, जाना चाहती हूँ के लिए पिछले सबक में तो था इकिताई देस, तो ताई देस और ते मिताई देस में क्या फर्क है?
0: हीरा आपने बहुत अच्छा नुकता उठाया है। कोई काम करने का इरादा जाहिर करने के लिए ताई देस का इस्तेमाल किया जाता है जैसा कि पिछले सबक में था, लेकिन अगर आप किसी ऐसे काम की ख्वाहिश जाहिर करना चाहें जो आपने पहले कभी ना किया हो और वो ख्वाहिश पूरी होने के इम्कानात भी ज्यादा ना हो, तो आप ते मिताई देस इस्तेमाल करेंगे, यानी करके देखना चाहता हूँ।
2: जी समझ गई। और अब वक्त हुआ है मश्क का, तो सामेइन सुनिए और दोहराइए।
4: इत्ते मिताई देस, निहों ये इत्ते मिताई देस।
2: जी सामेइन, यकीनन आपने जुमलों को उम्दगी से दोहरा लिया होगा।
0: अब जापान में कुछ करने की ख्वाहिश पर मबनी एक मुख्तसर मकालमा सुनिए।
5: निहोन दे नानी गा शिताई देस का?
6: सो देस ने, सुमो वो मिते मिताई देस।
0: और अब इस मकालमे की तशरीह।
5: निहोन दे नानी गा शिताई देस का?
2: जापान में क्या करना चाहती हैं?
6: सो देस ने।
0: ये जवाब सोचने के दौरान कहे जाने वाले अल्फाज हैं।
6: सुमो वो मिते मिताई देस।
2: मैं सुमो देखना चाहती हूँ।
0: सुमो यानी जापानी कुश्ती और मीते मिताई यानी देखना चाहती हूँ, ये दरअसल फेल मीरू यानी देखना की ते शक्ल मीते के बाद मिताई लगाकर बनाया गया है।
2: तो सामेइन मकालमा सुनिए और जवाब दोहराइए।
4: निहोन दे नानी गा शिताई देस का? सो देस ने, सुमो वो मिते मिताई देस। सो देस ने, सुमो वो मिते मिताई देस।
0: चलिए अब कुछ ऐसी मिसालों के साथ मशक करते हैं जिनकी आपको जापान में करने की ख्वाहिश हो सकती है। मसलन आप कोहे फूजी पर चढ़कर देखना चाहते हैं, तो ये बात आप किस तरह कहेंगे? कोहे फूजी पर चढ़ना की जापानी है
4: फुजीसान नी नोबोरु। फुजीसान नी नोबोरु।
0: फेल चढ़ना है नोबोरु और उसकी ते शक्ल है
4: नोबोत्ते। नोबोत्ते।
0: तो सामेइन कोशिश करें।
6: फुजीसान नी नोबोत्ते मिताई देस।
2: उम्मीद है आपने दुरुस्त जुमला बना लिया होगा।
0: और अब इजाफी मालूमात का कॉर्नर। आज का जुमला ताम ने उस वक्त कहा था जब युकी ने हैरत से कहा था कि आप जापानी जानती हैं, इसे इसी तरह याद कर लें।
1: स्कोशी दाके देस।
0: سکوشی کے معنی ہیں کچھ یا ذرا، اور داکے یعنی صرف۔ چنانچہ سکوشی داکے دس کا مطلب ہے صرف ذرا سی۔ اگر کوئی آپ کی جاپانی زبان کی تعریف کرے اور آپ جواب میں یہ جملہ کہیں تو امید ہے کہ وہ شخص آپ کے ساتھ آسان جاپانی بولے گا۔
2: اب یہ جملہ مختلف افراد کی آواز میں سنیے۔
7: سکوشی داکے دس،
8: سکوشی داکے دس،
9: سکوشی داکے دس۔
2: اب آپ اسے دہرائیے۔
4: سکوشی داکے دس۔
0: اب آج کا مکالمہ ایک بار پھر سنیے، اس حصے پر خصوصی دھیان دیں جس میں تام اپنی خواہش کا اظہار کرتی ہے۔
10: کونیچوا، واتاشی وا تامو دس۔
3: بوکو یوکی دس۔ تامو سان، نیپونگو گا دیکیرو ان دس نے۔
10: سکوشی داکے دس، راجیو دے بینکیو شیماشتا۔
3: سوگوئی دس نے۔
10: 日本へ行ってみたいです。
3: ぜひ来てください。僕が案内しますよ。
11: ハルさんの知恵袋。
2: अब हारू सान की जंबील का कॉर्नर। आज का मौजू है जापान की सुमो कुश्ती।
0: सुमो को जापान का कौमी खेल भी कहा जाता है। हीरा, आपने कभी ये कुश्ती देखी है?
2: हाँ जी, टीवी पर देखी है। پہلوانوں کا اپنے پہاڑ جیسے جسموں کو ٹکرانے کا منظر قابل دید ہوتا ہے۔
0: دو پہلوانوں کی اس کشتی میں مخالف کو اکھاڑے میں زمین پر گرا دینے یا اکھاڑے سے باہر دھکیل دینے والا پہلوان کامیاب قرار پاتا ہے۔ سومو کے مقابلے سال میں 6 بار تاک عدد والے مہینوں میں منعقد ہوتے ہیں۔ یہ مقابلے ٹوکیو، اوساکا، ناگویا اور کیوشو میں ہوتے ہیں۔
2: لیکن میں نے سنا ہے کہ ٹکٹ خریدنا مشکل ہوتا ہے۔
0: جاپان سومو ایسوسی ایشن کی ویب سائٹ پر اس سے متعلق معلومات انگریزی میں موجود ہیں۔ اگر آپ مقابلہ دیکھنے کے لیے ٹکٹ نہ خرید سکیں تب بھی ہیا کہلانے والے مختلف اکھاڑوں میں سومو کی مشق دیکھنے جا سکتے ہیں، جہاں پہلوان اپنے اکھاڑے کے استاد کی زیر نگرانی مشق کرتے ہیں۔ بعض اکھاڑوں میں مداحوں کو صبح کی مشق دیکھنے کی سہولت فراہم کی جاتی ہے۔
2: اچھا، پھر تو میں مشق دیکھنے ضرور جاؤں گی۔